0: ला तो जे केला
1: ले से तो छे ना ला
0: ला ओ केला दे लों दे से दो ता फाम था यु कुंग गे इना शवा चंग गे साम ल गु इन ले देन सजे ल लों दे रे मे वा तवा नी तो सों दे ते से यु न नि सरो जे ना से इन दा फाम चंग जे नाम ल या खा बा तों ने जे ने छे ने शेंग गे मे दु बे शे इन ला
1: ले से लो लो
0: ल ओ ला तो जे केला कु शो ना गो
1: ले से शि देन जा वा ल
0: ओ तं दे का दु या फे जे
1: ल
0: ओ
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
0: 弄的利用个家里能给屋顶上嘛，他们就是不尼姑说，这当才我那么多人给在上面的下人，这大他们就是学车。那行，老了啊。嗯，现在在别哪呢？又被大王我做了去，默默路上南面连接去，公个南面连接去，啊，这瀑布南面连接去，嗯，进来，路顶呢又被做，大中南面连接去，做几楼南面连接去，咱们做大王我做南面连接去。
2: 嗯，对吧？这里南面连接去，这里进来，嗯，嗯，看到他的那个样，没过去。那，对，哎，那他这里上那个了，这里的土里不能是搞不接出来了。
1: 那是。
2: 他们给的是，嗯，这里，嗯，这上那么多垃圾，嗯，嗯，他的空气全部满也是这里进来，因为嗯。
0: 他在那又被准备起来了去，
1: 嗯嗯，
0: 起来准备了去，嗯，这里这边了去，嗯，这个呢又被嗯，就老王子就过渡去，当然他们被那车的了不要，人家讲在那边这就过去了不要用了。那啊，这里我家都凶相了又被明晚晚的了不要用了。
1: 那了啊，
0: 说那么多了，这啷个当的啥子哪了哪去的了？
1: 那是，
0: 嗯，这里剩下的不那提着有的了。
1: 嗯，苏县韩车镇哪有呢？
0: 现在都是处理当啥的，嗯，感冒。
1: 啊，来来，先老了啊。
0: 你娘的先来拿。
1: 那他先拿了。